0: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
1: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
2: Easy Paisa laya shandar offer. Abhi sab se naye shoes khareede aur Easy Paisa QR se payment karke 25% cashback hasil kare. Ye offer mulk bhar ke tamam sab stores par dastiyab hai. Aaj hi shopping kare aur cashback ka fayda uthaye. Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
3: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ।
1: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैशबैक और होंडा एलेंट्रा जीतने का मौका।
4: At shopping of 5,000 rupees
1: only, and you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
0: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
5: यू कांट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग होम ऑन अ वीक फाउंडेशन। व्हेन एन एक्सपेक्टेंट मदर सफर्स फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, हर अनबोर्न चाइल्ड सफर्स टू। एंटरिंग द वर्ल्ड ऑलरेडी एट रिस्क ऑफ स्टंटिंग एंड लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल्स, टू रेज अ हेल्दी जनरेशन we must nourish the women carrying them.
6: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
7: You're listening to City FM 89.
8: We're playing your song.
9: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
10: Rock that, don't stop, rock that. Don't stop, stop.
11: Keep deep breath of that alkaline air.

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
3: Subah apni kamai se apni behan ki school fee pay karna. Ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the Jazz Cash app now.
4: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर रابطے में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में। ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर।

0: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
1: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा क्यूआर से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: Easy Paisa laya shandar offer. Abhi service se nayi shoes khareedein aur Easy Paisa QR se payment karke 25% cashback hasil karein. Ye offer mulk bhar ke tamam service stores par dastiyab hai. Aaj hi shopping karein aur cashback ka fayda uthayein. Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
2: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
4: Aaj subah gaadi mein apne paison se petrol dalwana. Ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the Jazz Cash app now.
5: City FM 89.
6: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: City FM 89, we're playing your song.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM
3: 89. जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैज़ कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज़ कैश है ना?
4: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
6: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
7: At shopping of 5,000 rupees
6: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
8: Aaj subah gaadi mein apne paison se petrol dalwana. Ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the Jazz Cash app now.
9: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
5: Subah apni kamai se apni behan ki school fee pay karna. Ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the Jazz Cash app now.
10: You haven't blown the candles of your 5th birthday yet. However, you face a 40% risk of being stunted. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge Partners: International Research Force, Globesite, Aga Khan University.
11: City FM 89, we're playing your song.
12: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: It's 9:30 a.m.
1: City FM
2: 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89. We're playing the song.
5: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
6: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back. Aur nayi gaadi? Sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
7: 79 saalon se PTCL hai Pakistan ke har raabte mein, khushi mein, yaadon mein, jazbon mein, iraadon mein. Ye qaumi tarah na PTCL ki taraf se Pakistan ki nazar.

0: City FM 89, we're playing your song. It's 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
0: City FM 89, we're playing your song.
1: This show is brought to you by AEO Pakistan.
0: City FM 89, we're playing your song.
3: Trending today.
4: Google has introduced four new phones at its Made by Google event: the Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, and Pixel 11 Pro Fold, all built around a redesigned camera bar that now uses edge-to-edge glass flowing into a metal frame. Google says that the new phones are meant to visually and materially match the rest of its hardware ecosystem, from Pixel Snap chargers to cases to the Pixel Watch.
5: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
6: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए? AEO पाकिस्तान लाया है Ailson Computer, जहां टेस्टिंग का हर पल होता है. Comfortable, smooth और stress-free. Daily availability, nationwide centers, aur results bhi mile within just 3 days. Aaj hi book kare apna Ailson Computer, AEO Pakistan, Pakistan's most trusted IELTS test center. Book now at www.aeo.com.pk.
7: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. ऐसी ऑफर्स अब कहाँ?
8: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
7: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैशबैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
9: At shopping of 5,000 rupees
7: only, and you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
10: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
11: पाकिस्तान ने हमें फ्रीडम दी टू ड्रीम बिग.
12: तो फिर ड्रीम्स को लिमिट क्यों करें?
11: गो आउट, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, लर्न समथिंग न्यू.
12: डिग्री लो, एक्सपीरियंस लो, एक्सपोजर लो
11: और फिर वापस आओ. जो सीखा है वो पाकिस्तान को दो. बिकॉज गोइंग ग्लोबल डजंट मीन लीविंग होम बिहाइंड.
12: कभी कभी फ्यूचर तक पहुंचने के लिए पहले दुनिया देखनी पड़ती है.
13: AEO पाकिस्तान की जानिब से अहले वतन को जश्न आजादी मुबारक.
14: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर राब्ते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में. ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर.

PTCL के साथ हर बदलता जमाना करें अपने नाम, क्योंकि आज भी हम हैं पाकिस्तान जितने जवान। City FM 89

0: This show is brought to you by Jazz. This show is brought to you by AEO Pakistan.
1: You're listening to City FM 89.
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
3: Paise kharch ho to reward to banta hai. Jazz Cash se sirf 99 rupees mein reward hub subscribe kare. Challenges complete karke apna level upgrade kare aur jeete shandar prizes. To der kis baat ki? Har challenge ko exciting reward mein badalne ke liye Jazz Cash hai na?
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
5: Easy Paisa laya shandar offer. Abhi service se naye shoes khareede aur Easy Paisa QR se payment karke 25% cashback hasil kare. Ye offer mulk bhar ke tamam service stores par dastiyab hai. Aaj hi shopping kare aur cashback ka fayda uthaye. Easy Paisa digital bank. Easy wala bank.
6: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
7: At shopping of 5,000 rupees
6: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
8: Jab tamam bills ek jagah pay ho jayein, to line mein kyun lagna? Abhi Jazz Cash app download karein aur pay karein apne bijli, gas, pani aur internet ke bills. Bina kisi stress ke. Mehfooz aur fauri bill ki adaigi ke liye Jazz Cash hai na?
9: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ जश्न आजादी मुबारक
10: IELTS seems difficult 4 sections limited time high pressure
11: listening reading writing speaking
10: not with AEO Pakistan
11: expert trainers mock tests speaking practice Tips and strategies.
10: Learn strategies that actually work.
11: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
10: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
12: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना ये है असल आजादी आपके लिए असल आजादी क्या है डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ
9: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ जश्न आजादी मुबारक
13: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
14: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर राब्ते में खुशी में यादों में जज्बों में इरादों में ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर

0: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
0: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: You got me going crazy.
0: This show is brought to you by AEO Pakistan.
3: You're listening to City FM 89.
4: Trending today.
5: Google has introduced four new phones at its Made by Google event: the Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, and Pixel 11 Pro Fold, all built around a redesigned camera bar that now uses edge-to-edge glass flowing into a metal frame. Google says that the new phones are meant to visually and materially match the rest of its hardware ecosystem, from Pixel Snap chargers to cases to the Pixel Watch.
1: City
6: FM
1: 89.
6: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
7: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
8: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back. Aur nayi gaadi? Sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
9: Easy Paisa laya shandar offer. Abhi service se nayi shoes khareede. Aur Easy Paisa QR se payment karke 25% cash back haasil kare. Ye offer mulk bhar ke tamam service stores par dastiyab hai. Aaj hi shopping kare aur cash back ka fayda uthaye. Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
10: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
8: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर Jazz Cash से 50% cashback और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
11: At shopping of 5,000 rupees
8: only, and you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
12: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ.
10: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
1: City FM 89.

0: ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर Jazz Cash से 50% cashback और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
4: At shopping of 5,000 rupees
3: only, and you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
5: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
6: City FM 89.
7: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर रابطے में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में। ये कौमी तरह ना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर।

0: This time check is brought to you by Jazz.
1: City
2: FM 89.
0: This show was brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
0: This show was brought to you by AEO Pakistan.
1: City FM 89.
3: Coming up next.
2: Future Sounds.
1: City FM 89.
4: You got me going crazy.
3: Trending today.
5: Google has introduced four new phones at its Made by Google event: the Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, and Pixel 11 Pro Fold, all built around a redesigned camera bar that now uses edge-to-edge glass flowing into a metal frame. Google says that the new phones are meant to visually and materially match the rest of its hardware ecosystem, from Pixel Snap chargers to cases to the Pixel Watch.
2: We are
0: City FM 89.
6: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
7: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
8: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
9: At shopping of 5,000 rupees
8: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
10: Azadi ke in rangon aur khushbuon se bani hamari is pehchan ko manane ke liye Kashmir Cooking Oil laya Azadi offer. 79 rupay tak ki bachat ke saath. Jashn-e-Azadi Mubarak.
11: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
12: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
10: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर. 79 रुपए तक की बचत के साथ जश्न आजादी मुबारक.
13: 79 सालों से पीटीसीएल है पाकिस्तान के हर राब्ते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में. ये कौमी तराना पीटीसीएल की तरफ से पाकिस्तान की नजर.

0: City FM 89, we're playing your song.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
2: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
4: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
5: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ.
6: You haven't blown the candles of your 5th birthday yet. However, you face a 40% risk of being stunted. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal Partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge Partners: International Research Force, Globesite, Aga Khan University.
0: Attention. Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
7: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.

0: City FM 89. We're playing your song. It's 8:30 p.m.
1: City FM 89.
2: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए JazzCash है ना?
3: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
5: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द JazzCash ऐप नाउ.
6: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back और नई गाड़ी सिर्फ स्कूल शूज पर. ऐसी ऑफर्स अब कहाँ?
4: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
7: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड JazzCash ऐप नाउ.
6: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर JazzCash से 50% cashback और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
8: At shopping of 5,000 rupees
6: only, and you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
9: City FM 89.
10: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर राब्ते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में. ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर.

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर।

0: It's 10:30 p.m. City FM 89, we're playing the song.
1: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए JazzCash है ना?
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
3: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: CDFM 89।
5: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर रابطے में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में। ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर।

0: Hi, this is Zoe Vikaji. Happy Independence Day to everyone. You are listening to City FM 89.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस तो देर किस बात की हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ जश्न आजादी मुबारक
3: सिटी एफएम 89
4: यू हैवंट ब्लोन द कैंडल्स ऑफ योर फिफ्थ बर्थडे येट हाउएवर यू फेस अ 40% रिस्क ऑफ बीइंग स्टंटेड दैट इज द स्टोरी ऑफ अ पाकिस्तानी चाइल्ड प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर एवरी चाइल्ड एवरी मदर फॉर अ प्रॉस्परस पाकिस्तान द इमरजेंसी वी कैन नो लॉन्गर इग्नोर Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad. Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSight, Aga Khan University.
5: City FM 89.
6: City FM 89 is now live on WhatsApp.
7: It's so easy.
8: 0314-289-8989.
7: Save, text, voice note or call to get your song played.
8: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
5: You're listening to City FM 89.
9: Attention, the standard commute has been decommissioned.
10: Introducing a system override for your ears.
9: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
11: Join ABD as he takes over the streets.
9: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
10: your evenings just got an upgrade.
11: The rush hour with ABD.
9: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
10: Tune in or get left behind.
12: City FM 89, we're playing the song.
8: You're listening to
13: Beat Camp.